0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती

0: गोरखा रेडियो हो
1: अपनी फेर आवर में मेरी प्यारी बुढ़ी मेरी मुंह जुनकिरी बिचारा अलसम मले बात पर ही बसी गोले मो बजे कस्तो खत्म के भने दिल जार जगर माथे राग फुक्क मले इला ओ पोस्टिया मेरी बुढ़ी बुढ़ी भन्दा रिसले ओ डार्लिंग आई लव लव आई लव यू माई सातो पुतलो फ्लाइङ आफ्टर सी यू अङ्ग्रेजी बुझ्दैन तँलाई देखेर सातो पुतलो उड्छ भन्या क्या